जाए प्रत परियै चण चण सत्र हमारे मरियै देग तेग जग में दौ चलै राखिया मोह और नंद लै तुम मम करो सदा प्र

माहि दोहरा जब आए प्रब को भयो जन्म धरा जग आए। अब मैं कथा सुन छेपते सबहु कहत सुनाए कब बाच दोहरा।

नित नित रख और धारो तम संसार चरण लग तरिया सब नानक ब्रह्म पसारो। श्लोक महला पंजवा।

संसारा एक रूप अनूप स्वरूप रंग पहुराव कहि पुपाव अंडज जे रज से तज किनी ओत भुज खान बहर रच दिनी कहु बोल राजा हो बैठा कहु सिमट पर शंकर कैठा शीघ्र श्रेष्ठ दिखाए अचम पव आद जुगंध स्वरूप सजम पव अवृक्षा मेरी तम करो सिखो बार सिख संग हरो धर्च ते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तुज तब सर नहीं परे तिनके दुष्ट दुख तह मरे पुरख जवन पग पर तिहारे तिनके तुम संकट समटारे जो कल को एक बार त्याय है ताके काल निकट न है रक्षा होता है सब काला दुष्ट अरह टरंत काला कृपा दृष्ट तन जाहे न हर हो ताके ताप तनक मह हर हो रिद सिद्ध कर्म सब होई दुठ छा छुप सकै न कोई एक बार जिनत मैं संभारा काल फास्ते ताहू बारा जिन नर नाम तिहारू कहा दर दुर दुख ते रहा।

बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुभराता, केलबिक सकल देह को हरता, अंदोष दुखियन को छह करता, श्री अस्तोज जा पय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बांछित फल पावे सोई, दुख न सा व्यापत कोई अड़ल।

बार जाओ पाई को कह चाओ पाई। संबत सत्रह सहस पण जय अर्ध सहस पुन तीन कह जय भाद्रव सुधी अष्टमी रवाराओ तीरस तद्रव ग्रंथ सुधाराओ सवैया। पाए गह जबते तुमरे तबते को आंख तरे नहीं अन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक मत एक न मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सबै बहु भेद कह हम एक न जान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कर।

सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सिती मरबजिया बाताइया राग रतन परवार परियां शब्द गा बने आईया शब्दोता गावो हरि केरा मन जनी वसाया कह नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे आ तू सदा दहो हरनाले हरनाल रहो तू मन मेरे दुख सब सारण अंगीकारो करि तेरा ओंकार सब सवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मरहम सारी कह नानक मन मेरे सदा रो हरनाले साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा ऐ घर ता तेरा सब किछ है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी ना मन मसावे नाम जिन कह मन मसिया वाजी शब्द कनेरी कह नानक सच्चे साहिबो क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो सात नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन ऐ बसिया जिन इच्छा सब पुजाइया

ना है टुटे ना मन लगे ना है जले ना जाए तहन समान स्नान का जोगल चले पाए चौकड़ मोला ना बे चौके पाए सिखा कंचड़।

काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन कौ सेना महर कह लागे कह नानक तह सुखो आत करन हद वाजे आनंद सुनहो वड पहगी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे।